0: ती झेमर सुर संगीती उस्ताद अनिल बख्श
1: सिंह शादी कोर
0: ये ज्यादा का नाम है सिंधी कथा सिंह शादी कोर ये जो दमुरा वाला हमारा